थोड़ा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 में 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro में 6000 mAh पावरफुल बैटरी के साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: सबैको मन सुने
2: रेडियो भेरी FM।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: पोत्र सुत दरा दुई दिन को मेला धनपुत्र सुत दरा।